जान सब यात्री तो यात्री तो यात्री कुन मंदिर में जाने हो मजाने हो मजाने हो कुन सामग्री पूजा करने करने करने साथ कसरी लाने हो